पार जब अकरख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ जेते बदन सृहत सब धारे आप अपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते राहत निरालम जानत वेद भेद अर आलम।

पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सास सास सिमरो गोबिंद मन अंतर की उत्तर चिंद आस अनित त्यागो त्रंग संत जना की तूर मन मंग आव छोड़ बेनती करह साध संग आगन सागर तारह साध संगत विच आके जीवन का बेड़ा पार हो जाता जे गुरु की अपार कृपा है रोजाना दे तुसी नेमी अते प्रेमी हो गुरु संगत करन दा सुभाग अवसर प्राप्त होया है गुरु बख्शिश द्वारे लड़ीवार गुरु शब्द नाल रोजाना साझ बनती है अमृत बचन आदि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे पावन अंग 430 ते सतगुरां दा शब्द खालसा जी सुभाईमान है अते तीसरे पातशाह धन गुरु अमरदास जी दी ही मुबारक रसना तो अमृत बचना दी दात प्राप्त हुई है आओ अज दे अमृत बचना नाल गुरु संगत जी सांझ करिए।

सो हमरी रक्षा करे गुर कलगीत हर बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

जाको सतगुर दियो नाम, जाको भेट्यो ठाकर अपना, मन तन शीतल हर हर जपना। कहो नानक जो जन प्रभ पाए, ताकि रेना बिरला को पाए। भैरो मोहल्ला पांजवा। चितवत पाप ना आलक आवै, बेसवा भजत किशने शरमावै। सारो दिन समजूरी करै, हर सिमरन की वेला बजर सिर परै। माया लग भूलो संसार, आप भुलाया भुलावन हार। राच रहया बिरथा ब्योहार रहाओ, पेखत माया रंग बिहाए। गड़बड़ करै कौडी रंग लाए,

जी को आधार गुर प्रसाद जपो नित पाई तार रह सागर संसार रहाओ जिन को लिखिया हर एहो निदान से जन दर गै पावे मान सूख सहज

नाम हमारे भोजन पाओ, नाम हमारे मन का सुआओ, नाम न विसरे संत प्रसाद, नाम लै तन हद पूरे नाद, प्रभ कृपा ते नाम नौ निध पाई, गुर कृपा ते नाम स्यो बनियाई, धनवंते सही प्रधान, नानक जाके नाम निधान, भैरो मोहल्ला पंजवा।

नाम हमारे मजन स्नान, नाम हमारे पूर्ण दान, नाम लैत ते सगल पवीत, नाम जपत मेरे पाई मीत, नाम हमारे सौन संजोग, नाम हमारे त्रिपत सुभोग, नाम हमारे सगल काचार, नाम हमारे सगल आचार, नाम हमारे निर्मल व्यवहार, जाके मन

करके कृपा अपनी सेवा लाए नानक दास तेरी शरणाए। भैरो मोहल्ला पांजवा। लाज मर जो नाम ना लेवे नाम बिहून सुखी क्यों सोवै।

गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु गुरु

सच मंत्र तुम्हारा अमृत बाणी शीतल पुरख दृष्ट सजानी सच हुक्म तुम्हारा।

से जान परवान, प्रभु कौ सिमर है से पुरख प्रधान। प्रभु कौ सिमर है से बेमोह ताजे, प्रभु कौ सिमर है से सर्व के राजे। प्रभु कौ सिमर है से सुखवासी, प्रभु कौ सिमर है सदा अविनाशी। सिमरन ते लागे जिन आप दयाला, नानक जन की मंगै रवाला। प्रभु कौ सिमर है से पर उपकारी, प्रभु कौ सिमर है तिन सद बलिहारी। प्रभु कौ सिमर है से मुख सुहावे, प्रभु कौ सिमर है तिन सुख बिहावै। प्रभु कौ सिमर है तिन आत्म जीता, प्रभु कौ सिमर है तिन निर्मल रीता। प्रभु कौ सिमर है तिन आनंद कनेरे, प्रभु कौ सिमर है बस है हर नेरे। संत कृपा ते अनदिन जाग, नानक सिमरन पूरै भाग। प्रभु कै सिमरन कारज पूरे, प्रभु कै सिमरन कबहो न झूरे। प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभु कै सिमरन सहज समानी। प्रभु कै सिमरन निहचल आसन, प्रभु कै सिमरन कमल बिगासन। प्रभु कै सिमरन अनहद झुनकार, सुख प्रभु सिमरन का अंत ना पार। सिमर है से जान जिन कौ प्रभ मया, नानक तिन जन सरणी पया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग भेद उपाए। हर सिमरन पए सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चहो कुंट जाते। हर सिमरन धारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन कियो सगल अकारा, हर सिमरन मह आप निरंकारा। कर कृपा जिस आप बुझाया।

श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमरते पेखे सर्ब टडोल पूज सनाही हर हरे नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमरत वख्यान जोग अभ्यास कर्म धर्म किरिया सगल त्याग बन मध्ये फिरिया। अनेक प्रकार किए बहु जतना पुन दान होमे बहु रतना शरीर कटाए होमे कर राती वर्त नेम करे बहु पाती नहीं तुल राम नाम विचार नानक गुरमुख नाम जपिया एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिरै चिर जीवै महा उदास तपीसर थीवै अग्न माहे होमत प्राण कनक असव है भरभूम दान। न्योली कर्म करै बहु आसन जैन मार्ग संजम अत साधन निमख निमख कर शरीर कटावै तौ भी होमै मैल न जावै। हर के नाम समसर कछ नाहे नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे मन कामना तीर्थ देह छुटै गर्भ गुमान न मन ते हुटै। सोच करै दिन सार रात मन की मैल न तन ते जात इस देही को बहु साधना करै मन ते कबहु न बिख्या टरै। जल धोवै बहु देह अनीत शुद्ध कहा हुए काची पीत मन हर के नाम की महिमा ऊच नानक नाम उदरे पतित बहुमूच। बहुत स्याणप जमका भौ व्यापै अनक जतन कर त्रिसन ना त्रापै भेख अनेक अगन नहीं बुझै कोट उपाव दरगह नहीं सिज्जै। छूट सनाही ऊब पयाल मोहे व्यापह माया जाल अवर करतूत सगली जम डानै गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै। हर का नाम जपत दुख जाए नानक बोलै सहज सुभाए चार पदार्थ जे को मांगै साध जना की सेवा लागै। जे को अपना दुख मिटावै हर हर नाम हृदय सद गावै जे को अपनी शोभा लोरै साध संग एह होमै छोरै। जे को जन्म मरण ते डरै साध जना की सरनी परै जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक ताकै बल बल जासा। सगल पुरख मह पुरख प्रधान साध संग जाका मिटै अभिमान आपस कौ जो जाने नीचा सो गनिया सब ते ऊचा। जाका मन होए सगल कीरीना हर हर नाम तिन काट काट चीना मन अपने ते बुरा मिटाना पेखै सगल सरिसट साजना। सुख दुख जन समदृष्टेता नानक पाप पुन नहीं लेपा।

अष्टपदी रमैया के गुणचेत परानी कवन मूलते कवन दृष्टानी जिन तू साज सवार सिगारिया गर्भ अगर मह जिन उबारिया बार व्यवस्था तुझ प्यार दूध पर जोवन भोजन सुख सूद बिरद भया ऊपर साक सैन मुख अप्याओ बैठ कौ दैन एहो निर्गुण गुण कछु न बूझै बख्श लिहो तो नानक सीजै जय प्रसाद धर ऊपर सुख बसहै सुत प्रात मीत बनता संग हसहै जय प्रसाद पीवह शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमुला जय प्रसाद भोगह सब रसा सगल समग्री संग साथ बसा दीने हस्त पाव करन नेत्र रसना तिसह त्याग अवर संग रचना ऐसे दोख मूड अंध व्यापे नानक काढ लिहो प्रभ आपे आद अंत जो राखन हार तिस स्यो प्रीत ना करै गवार जाकी सेवा नव निध पावै ता स्यो मूड़ा मन नहीं लावै जो ठाकुर सद सदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे जाकी टहल पावै दरगह मान तिसह बिसारै मुग्ध अजान सदा सदा एहो भूलन हार नानक राखन हार अपार रतन त्याग कौडी संग रचै साच छोड़ झूठ संग मचै

कहा बुझारत बूझै डोरा, निस कहियै तौ समझै पोरा। कहा बिसनपद गावै गुंग, जतन करै तौ पी सुर भंग। कह पिंगल पर्वत पर भवन, नहीं होत ऊहा उस गवन। करतार करना मैं दीन बेनती करै, नानक तुमरी कृपा तरै। संग सहाई सो आवै न चीत, जो बैराई ता स्यो प्रीत। बलुआ के ग्रह पीतर बसै, अनद केल माया रंग रसै। दृढ़ कर मानै मनै प्रतीत, काल न आवै मूड़े चीत। बैर विरोध काम क्रोध मोह, झूठ विकार महालोभ त्रोह। याहो जुगत बिहाने कई जन्म, नानक राख लेहो आपन कर करम। तू ठाकुर तुम पह अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास। तुम मां

अष्टपदी दस वस्तु ले पाछै पावै एक वस्त कारण बिखोट गवावै एक भी ना दे दस भी हिर ले तो मूढ़ा कहो कहा करे जिस ठाकुर से नाही चारा ताको कीजै सद नमस्कारा जाकै मन लागा प्रभ मीठा सर्व सुख ताहू मन बूठा जिस जन अपना हुक्म मनाया सर्व थोक नानक तिन पाया अगनत साहो अपनी दे रास खात पीत बरत अनद उलास अपनी अमान कछ

मिथ्या काम क्रोध विकराल, मिथ्या रथ हस्ति असव बस्तरा, मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता, मिथ्या त्रोह मोह अभिमान, मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान, अस्थिर भगत साध की शरण, नानक जप जप जीवै हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है, मिथ्या हस्त पर दर्भ को हिर है, मिथ्या नेत्र पेखत परत्र रूपाद, मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद, मिथ्या चरण पर बकार को ताव है, मिथ्या मन पर लोभ लभाव है, मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या बास लेत विकारा, बिन बुझे मिथ्या सब पये, सफल देह नानक हर हर नाम लये। बिरथी साकत की आरजा, साच बिना कह होवत सूचा, बिरथा नाम बिना तन अंध, मुख आवत ताके दुर्गंध, बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाए, मेघ बिना ज्यों खेती जाए, गोविंद भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यों कृपन के निरारथ दाम, तन तन ते जन जेह काट बस्यो हर नाओ, नानक ताके बल बल जाओ, रहत अवर कछ अवर कमावत, मन

जिसका अंतर बसा निरंकार तिसकी सीख तरह संसार जो तुम भाने तिन प्रभ जाता नानक उन जन चरण पराता करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने।

प्रभ कृपा ते होए प्रगास, प्रभु दया ते कमल बिगास, प्रभ सप्रसन्न वसै मन सोए, प्रभ दया ते मत उत्तम होए, सर्व निदान प्रभ तेरी मया, आप हो कछो ना किन्हू लया, जित जित लाव हो तित लग।

अचरज कथा अष्टपदी साध कै संग मुख उज्जल होत साध संग मल सगली खोत साध कै संग मिटै अभिमान साध कै संग प्रगटै सुज्ञान साध कै संग बुझै प्रभ नेरा साध संग सब होत नवेरा साध कै संग पाए नाम रतन साध कै संग एक ऊपर जतन साध की महिमा बरनै कौन परानी नानक साध की शोभा प्रभ माहे समानी साध कै संग अगोचर मिलै साध कै संग सदा प्रफुल्लै साध कै संग आवह बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग होए सब की रेन साध कै संग मनोहर बैन साध कै संग ना कतहूं धावै साध संग अस्थित मन पावै साध कै संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न साध संग दुश्मन सब मीत साधु कै संग महापुनीत साध संग किस स्यो नहीं बैर साध कै संग ना बीगा पैर साध कै संग नाही को मंदा साध संग जाने परमानंदा साध कै संग नाही हो ताप साध कै संग तजै सब आप आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बन आई साध कै संग न कबहू तावै साध कै संग सदा सुख पावै साध संग बस्त अगोचर लहै साधु कै संग अजर सहै साध कै संग बसै थान ऊचै साधु कै संग महल पहुँचै साध कै संग दृढ़ सब धर्म साध कै संग केवल पार ब्रह्म साध कै संग पाए नाम निधान नानक साधु कै कुर्बान साध कै संग सब कुल उधारै साध संग साजन मीत कुटुंब निस्तारै साधु कै संग सो धन पावै जिस धन ते सब को वरसावै साध संग धर्म राय करे सेवा साध कै संग शोभा सुर देवा साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध कै संग सरब थान गम नानक साध कै संग सफल जनम साध कै संग नहीं कछ काल दर्शन भेटत होत निहाल साध कै संग कलूखत हरै साध कै संग नरक पर हरै साध कै संग ईहा ऊहा सुहेला साध संग बिछरत हर मेला जो इच्छा सोई फल पावै साध कै संग ना बिरथा जावै पार ब्रह्म साध रिद बसै नानक उदरै साध सुन रसै साध कै संग सुनो हर नाओ साध संग हर के गुण गाओ साध कै संग ना मन ते बिसरै साध संग सर पर निस्तरै साध कै संग लगै प्रभ मीठा साधु कै संग घट घट डीठा साध संग भय आज्ञाकारी साध संग गत भई हमारी साध कै संग मिटे सब रोग नानक साध भेटे संजोग साध की महिमा वेदना जान है जेता सुनै तेता बखयान है साध की उपमा त्यो गुण ते दूर साध की उपमा रही भरपूर साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा ऊच ते ऊचे साध की शोभा मूच ते मूचे साध की शोभा साध बन आए नानक साध प्रभ भेद न पाए श्लोक मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखै एक सबिन कोए नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल मह कमल अलेप ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व कौ सोख ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान जैसे राज रंक कौ लागै तुल पवान ब्रह्म ज्ञानी कै धीरज एक ज्यों वसुधा को खोदै को चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का एह गुनाओ नानक ज्यों पावक का सहज सुभाओ ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागै जला ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास जैसे धर ऊपर आकाश ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सतर समान ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊच ते ऊचा मन अपना है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन भये नानक जिन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पया
ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी के दृष्ट अमृत वर्षी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक, ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा, ब्रह्म ज्ञानी का नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी का होए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी का एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी का बसै प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी का नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी का नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अंग बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी का मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी का कर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता, ब्रह्म ज्ञानी का होए अचिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करै प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्स बड़ भागी पाइय, ब्रह्म ज्ञानी कौ बल बल जाइय, ब्रह्म ज्ञानी कौ खोज है महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाहे, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी कौ सदा आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथया ना जाए अदाख्यर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने,

ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी साध जीवै नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की

पंच दोख ते रहत नानक कोट मध्य को ऐसा अपरस बैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न बिसन की माया ते होए पिन कर्म करत होवै नह कर्म तिस बैसनो का निर्मल धर्म काहू फल की इच्छा नहीं बाचै केवल भगत कीर्तन संग राचै मन तन अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल आप दृढ़ अवरह नाम जपावै नानक ओह बैसनो परम गत पावै भगौती भगवंत भगत का रंग सगल त्यागै दुष्ट का संग मन ते बिनसै सगला भरम कर पूजै सगल पार ब्रह्म साध संग पापा मल खोवै तिस भगौती की मत उत्तम होवै भगवंत की टहल करै नित नीत मन तन अर्पै बिसन प्रीत हर के चरण हृदय बसावै नानक ऐसा भगौती भगवंत कौ पावै सो पंडित जो मन प्रबोधै राम नाम आत्म महसोधै राम नाम सार रस पीवै उस पंडित कै उपदेश जग जीवै हर की कथा हृदय बसावै सो पंडित फिर जोन न आवै वेद पुराण सिमरत बूझै मूल सूखम मह जानै असथूल चौ वरना कौ दे उपदेश नानक उस पंडित कौ सदा आदेश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौ वरना मह जपै को नाम जो जो जपै तिसकी गत होए साध संग पावै जन कोए कर कृपा अंतर उरतारै पास प्रेत मुगद पाथर कौ तारै सर्व रोग का औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम काहू जुगत कितै ना पाइय धर्म नानक तिस मिलै जिस लिख्या तुर कर्म जिसकै मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत रामदास आत्म राम तिस नदरी आया दास दसंतन पाए तिन पाया सदा निकट निकट हर जान सो दास दरगह परवान अपने दास कौ आप कृपा करै तिस दास कौ सब सोझी परै सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक रामदास प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै जीवन मुक्त सो कहावै तैसा हरख तैसा उस सोग सदा आनंद तह नहीं वियोग तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिख खाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंक तैसा राजान जो वरताई साई जुगत नानक ओह पुरख कहिया जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित कर राखै तैसा तिन नाओ आपे करण करावन जोग प्रभ पावै सोई फुन होग पसर्यो आप होए अनत तरंग लखे न जाहे पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा परगास पार ब्रह्म करता अविनाश सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक पय निहाल श्लोक उस्तत करह अनेक जन अंत ना पारावार नानक रचना प्रवरचे बहु विद अनेक प्रकार अष्टपदी

कोट अंध अज्ञानी, कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अपिग आत्मन कोर, कई कोट पर दर्ब को हिर है, कई कोट पर दुख ना कर है, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश परमाहे।

कोट पाथर ब्रिख निप जाय, कई कोट पवन पानी वै संतर, कई कोट देश भू मंडल, कई कोट ससियर सूर नखेत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर छतर, सगल समगरी अपने सूत धारै, नानक जिस जिस भावै तिस तिस निस्तारै, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत अरसास्त, कई कोट किए रतन समुद, कई कोट नाना प्रकार जंत, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर सुवर्ण थीवे, कई कोट जख किन्नर पिसाच, कई कोट भूत प्रेत सुकर मिर्गाच, सब ते नेरा सब हूते दूर, नानक आप अलिप्त रहया भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्म है जीव है मर है, कई कोट बहुजोनी फिर है।

अष्टपदी जिसका अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होवत स्वान जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत विष्टा का जंत आपस कौ कर्म।

बहु लस्कर मानुख ऊपर करे आस, पल भीतरता का होए विनाश। सबते आप जान बलवंत, खिन मह होए जाए पसमंत।

कोट कर्म करै हवतारे शर्म पावै सगले बिरथारे अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर अवतार अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवै हर दरगह कहो कैसे गवै आपस कहो जो भला कहावै तिसह भलाई निकट न आवै सर्व की रेन जा का मन होए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कछ होए तब इसको सुख नाहीं कोए जब यह जाने मैं किछ करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता जब तारै को बैरी मीत तब लग निचल नाहीं चीत जब लग मोह मगर संग माए तब लग धर्म राय दे सजाए प्रभ कृपा ते बंधन टूटै गुरप्रसाद नानक हो छूटै सहस खट्टे लख को उठतावै तृप्त न आवै माया पाछै पावै अनक भोग बिख्या के करै नह तृपतावै खप खप मरै बिना संतोख नहीं को राजै सुपन मनोरथ बिरथे सब काजै नाम रंग सर्व सुख होए बटभागी किसै प्रा

आए आप उपदेशै समझै आप आपे रचया सब कै साथ आप कीनो आपन विस्थार सब कछ उसका ओह करनै हार उसते भिन्न कहो किछ होए थान थरंतर एकै सोए अपने चलत आप करनै हार कौतक करै रंग आपार मन मह आप मन अपने माहे नानक कीमत कहन न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुरप्रसाद किनै वखियानी सच सच सच सब कीना कोट मधे किनै बिरलै चीना भला भला भला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी घट घट सुनी सरवन बखियाणी पवित्र पवित्र पवित्र पुनीत नाम जपै नानक मन प्रीत श्लोक संत सरण जो जन परै सो जन उधर नहार संत की निंदा नानका बहुर बहुर अवतार अष्टपदी संत का दुखन आर जा घटै संत का दुखन जमते नहीं छुटै संत का दुखन सुख सब जाए संत का दुखन नरक में पाए संत का दुखन मत होए मलीन संत का दुखन सोभा ते हीन संत के हते को रखै न कोई संत का दुखन थान भ्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जे करै नानक संत संग निंदक भी तरै संत के दुखन ते मुख पवै संतन कै दुखन काग ज्यों लवै संतन कै दुखन सर्प जोन पाए संत कै दुखन त्रिगत जोन किरमाए संतन कै दुखन तृष्णा मह जलै संत कै दुखन सब को छलै संत कै दुखन तेज सब जाए संत कै दुखन नीच नीचाए संत दुखी का थाओ को नाहे नानक संत पावै ता ओए भी गत पाहे संत का निंदक महा अत ताई संत का निंदक खिन टिकन ना पाई संत का निंदक महा हत्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज ते हीन संत का निंदक दुखिया अर दीन संत के निंदक कौ सर्ब रोग संत के निंदक कौ सदा बिजोग संत की निंदा दोख मैं दोख नानक संत भावै ता उसका पी होए मोख संत का दुखी सदा अपवित संत का दुखी किसै का नहीं मित संत के दुखी कौ डान लागै संत के दुखी कौ सब त्यागै संत का दुखी महा अहंकारी संत का दुखी सदा बिकारी संत का दुखी जन्मै मरै संत की दुखना सुख ते टरै संत के दुखी कौ नाहीं ठाओ नानक संत भावै ता लय मिलाए संत का दुखी अद बीच ते टूटै संत का दुखी कितै काज ना पहुँचै संत के दुखी को उद्यान परमाइयै संत का दुखी उजड़ पाइयै संत का दुखी अंतर ते थोथा ज्यों सास बिना मृतक की लोथा संत के दुखी की जड़ किछ नाहे आपन बीज आपे ही खाहे संत के दुखी कौ अवर न रखनहार नानक संत भावै ता लए उबार संत का दुखी इउं बिल लाए ज्यों जल बिहून मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजै ज्यों पावक ईदन नहीं तरापै संत का दुखी छुटै अकेला ज्यों बुआड़ तिल खेत माहे दुहेला संत का दुखी धर्म ते रहत संत का दुखी सद मिथ्या कहत किरत निंदक का तुरही पया नानक जो तिस भावै सोई थया संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए संत के दुखी कौ दरगह मिलै सजाए संत का दुखी सदा सहकाइयै संत का दुखी न मरै न जीवाइयै संत के दुखी की पूजै न आसा संत का दुखी उठ चलै निरासा संत कै दुख न तृष्टा कोए जैसा भावै तैसा कोई होए पया किरत न मिटै कोए नानक जानै सच्चा सोए सब कट तिसके ओह करनै हार सदा सदा तिसकौ नमस्कार प्रभ की उस्तत करहो दिन रात तिसह त्यावहो सास ग्रास सब कछ वरतै तिसका किया जैसा करे तैसा को थिया अपना खेल आप करना हार दूसर कौन कह बिचार जिसनो कृपा करै तिस आपन नाम दे बड़ भागी नानक जन से श्लोक तजहो स्यानप सुरजन हो सिमर हो हर हर राय एक आस हर मन रखो नानक दुख परम पौ जाए अष्टपदी मानुख की टेक वृथी सब जान देवन कौ एक है भगवान जिसके दिया रह अगाए बहुर न तृष्णा लाग आए मारा राख एको आप मानुख कै किछ नाही हाथ तिसका हुक्म बूझ सुख होए तिसका नाम रख कंठ परोए
सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए नानक बिघन न लागै कोए। उस्तत मन मह कर निरंकार कर मन मेरे सत व्यवहार निर्मल रसना अमृत पियो सदा सोहिला कर लह जियो नैनो पेख ठाकुर का रंग साध संग बिनसै सब संग चरण चलो मार्ग गोबिंद मिटह पाप जपिया हर बिंद कर हर करम श्रवण हर कथा हर दरगह नानक उज्जल मथा। बड़ भागी ते जान जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करह विचार से धनवंत गरी संसार। मन तन मुख बोल है हर मुखे सदा सदा जानो ते सुखे एको एक एक पछाना इत उत की हो सो जी जाना नाम संग जिसका मन मान्या नानक तिन्ह निरंजन जान्या। गुरप्रसाद अपने आप सुजै तिसकी जानो तृष्णा बुझै साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओहो हर जन रहत अन दिन कीर्तन केवल बखियान गृहस्थ मह सोई निर्वाण। एक ऊपर जिस जन की आसा तिसकी कटिया जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसह न लागै दुख। जिसका ओ हर प्रभ मन चित आवै सो संत सोहेला नहीं डुलावै जिस प्रभ अपना कृपा करै सो सेवक कहो किसते डरै। जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजया गुरप्रसाद तत सब बूझया जब देखो तब सब किछ मूल नानक सो सूखम सोई असथूल नह किछ जन्मै नह किछ मरै आपन चलत आप ही करै। आवन जावन दृष्ट अनदृष्ट आज्ञाकारी धारी सब सृष्ट आपे आप सगल मह आप अनक जुगत रच थाप ओ थाप अविनाशी नाही किछ खंड धारण धार रहो ब्रह्मंड अलख अपेव पुरख प्रताप आप जपाए ता नानक जाप जिन प्रभ जाता सो सोभावंत सगल संसार उदरै तिन मंत। प्रभ के सेवक सगल उदाहरण प्रभ के सेवक दुख बिसारण आपे मेल ले कृपाल गुर का शब्द जप भई निहाल उनकी सेवा सोई लागै जिसनों कृपा करह बड भागै। नाम जब तो पावह विश्राम नानक तिन पुरख को उत्तम कर मान जो किछ करै सो प्रभ कै रंग सदा सदा बसै हर संग। सहज सुभाए होवै सो होए करणै हार पछाणै सोए प्रभ का किया जन मीठ लगाना जैसा सा तैसा दृष्टाना। जिस ते उपजे तिस माहे समाए ओए सुख निदान उनहू बन आए आपस कौ आप दीनो मान नानक प्रभ जन एको जान। श्लोक सर्व कला भर पूर प्रभ बिरथा जानन हार जाकै सिमरन उदरीऐ नानक तिस बलिहार। अष्टपदी टूटी गांडन हार गोपाल सर्व जिया आपे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिसते बिरथा कोई नाहे। रे मन मेरे सदा हर जाप अविनाशी प्रभ आपे आप अपन किया कछु ना होए जे सौ प्राणी लोचा कोए तिस बिन नाही तेरा किछ काम गत नानक जप एक हर नाम रूपवंत होए नाही मोहै प्रभ की जोत सगल घट सो है। धनवंता होए क्या को गरबै जा सब किछ तिसका दिया दरबै अत सूरा जे को कहावै प्रभ की कला बिना कहतावै जे को होए बह दातार तिस देन हार जानै गावार। जिस गुर प्रसाद टूटै हो रोग नानक सो जन सदा अरोग ज्यो मंदर को थमै थमन त्यों गुर का शब्द मनह अस्थमन। ज्यो पाखाण नाव चढ़ तरै प्राणी गुर चरण लगत निस्तरै ज्यो अंधकार दीपक प्रगास गुर दर्शन देख मन होए बिगास। ज्यो महा उद्यान मह मार्ग पावै त्यो साधु संग मिल जोत प्रगटावै तिन संतन की बाछो तू।

सुखमान भूला काहे फिरह अजान, कौन बस्त आई तेरा संग, लपट रहो रस लोभी पतंग। राम नाम जप हिरदे माहे, नानक पत सेती कर जाहे। जिस वखर कौ लैन तू आया, राम नाम संतन घर पाया। तज अभमान लिहो मन मोल, राम नाम हिरदे महतोल। लाद खेप संत है संग चाल, अवर त्याग बिख्या जंजाल। धन धन कह सब कोय, मुख उजल हर दर गह सोए। एहो वापार बिरला वापार है, नानक ताकै सद बलिहार है। चरण साध के धोए धोए पियो, अर्प साध को अपना जियो। साध की धूर करो इसनान, साध उपर जाइए कुर्बान। साध सेवा वडभागी पाइए, साध संग हर कीर्तन गाइए। अनक बिघन ते साधु राखै, हर गुण गाए अमृत रस चाखै। ओट गही संत है दर आया, सर्व सुख नानक ते पाया। मृतक कौ जीवालनहार, भूखे कौ देवत आधार। सर्व निदान जाके दृष्टि माहे, पुरब लिखे का लहना पाहे। सब किछ तिसका हो करना जोग, तिस बिन दूसर हुआ ना होग। जप जन सदा सदा दिन रहनी, सब ते ऊच निर्मल एह करनी। कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सो जन निर्मल थिया। जाकै मन गुर की प्रतीत, तिस जन आवै हर प्रभ चीत। भगत भगत सुनिए त्यो लोए, जाकै हिरदय एको होए। सच करनी सच ताकी रहत, सच हिरदय सतमुख कहत। साची दृष्ट साचा आकार, सच वरतै साचा पासार। पार ब्रह्म जिन सच कर जाता, नानक सो जन सच समाता। श्लोक। रूप ना रेख ना रंग किछ, त्रिहु गुण ते प्रभ भिन्न। तिसह बुझाए नानका, जिस होवै सो प्रसन्न। अष्टपदे। अविनाशी प्रभ मन मह राख, मानुख की तू प्रीत त्याग। तिसते परै नाही किछ कोए, सर्व निरंतर एको सोए। आपे बीना आपे दाना, गहर गंभीर गहीर सुजाना। पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद, कृपा निधान दयाल बखसंद। साध तेरे की चरणी पाओ, नानक कै मन एहो अनराओ। मनसा पूरन सरना जोग, जो कर पाया सोई होग। हरन भरन जाका नेत्र फोर, तिसका मंत्र ना जान होर। अनद रूप मंगल सद जाकै, सर्ब थोक सुनी है कर ताकै। राज महराज जोग मह जोगी, तप मह तपीसर गृहस्थ मह भोगी। त्याए त्याए भगत है सुख पाया, नानक तिस पुरख काकने अंत न पाया। जाकी लीला की मित नाहे, सगल देव हारे अवगाहे। पिता का जन्म के जान पूत, सगल परोई अपने सूत। समत ज्ञान ध्यान जिन दे, जनदास नाम त्या वह से। त्यो गुण मह जा को परमाए, जन्म मरै फिर आवै जाए। ऊच नीच तिसके अस्थान, जैसा जनावै तैसा नानक जान। नाना रूप नाना जाके रंग, नाना भेख करह एक रंग। नाना बिद कीनो विस्थार, प्रभ अविनाशी एकंकार। नाना चलत करे खिन माहे, पूर रहे ओ पूर्ण सब ठाए। नाना बिद कर बनत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई। सब घट तिसके सब तिसके ठाओ, जप जप जीवै नानक हर नाओ। नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड। नाम के तारे सिमरत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान। नाम के तारे आगास पाताल, नाम के तारे सगल आकार। नाम के तारे पुरिया सब भवन, नाम के संग उदरे सुन श्रवन। कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद मह सो जान। गत पाए रूप सत जाका सत अस्थान, पुरख सत केवल प्रधान। करतूत सत सत जाकी बाणी, सत पुरख सब माहे समाणी। सत कर्म जाकी रचना सत, मूल सत सत उत्पत। सत करनी निर्मल निर्मले, जिसह बुझाए तिसह सब भली। सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुरते पाई। सत बचन साधु उपदेश, सत ते जन जा कर दे प्रवेश। सत निरत बूझा जे कोय, नाम जपत ताकी गत होए। आप सत किया सब सत, आपे जान अपनी मित गत। जिसकी सृष्ट सो करण हार, अवर न बूझ करत विचार। करते की मित न जान किया, नानक जो तिस भावै सो वर्तिया। बिस्मन बिस्म पए बिस्माद, जिन बूझया तिस आया स्वाद। प्रभ कै रंग राच जन रहे, गुर कै बचन पदार्थ लहे। ओए दाते दुख काटन हार, जाकै संग तरै संसार। जन का सेवक

आए नानक की प्रभ बेनते अपनी भगती लाए अष्टपदे जाचक जान जाच प्रवदान कर कृपा देव हो हर नाम साध जना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी सरदा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम है त्यावो चरण कमल सो लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नितनीत एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोए जिन चाख्या से जान त्रिपताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने सुपहर परे प्रेम रस रंग उपजा चाहो साध कै संग परे सरन आन सब त्याग अंतर प्रगास अनदिन लिवलाग बटभागी जप्या प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेवक की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होयो दयाल सेवक कीनो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन भया जन्म मरण दुख भ्रम गया इच्छ पुन्नी सरदा सब पूरी रव रहया सद संग हजूरी जिसका सा तिन लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों बिसरै जे काल न भानै सो क्यों बिसरै जे किया जानै सो क्यों बिसरै जिन सब किछ दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया सो क्यों बिसरै जे अगन मह राखै गुर प्रसाद को बिरला लाखै सो क्यों बिसरै जे बिखते काढ़ै जन्म जन्म का टूटा गाढ़ै गुरपूरै तत इह बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करहो इहो काम आन त्याग जपहो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावहो आप जपहो अव रह नाम जपावहो भगत पाए तरिया संसार बिन भगती तन हो सी छार सर्व कल्याण सुख निद नाम बूढ़त जात पाए विश्राम सगल दुख का होवत नास नानक नाम जपहो गुणतास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मन तन अंतर एही सुआओ नेत्र हो पेख दर्स सुख होए मन बिकसै साध चरण धोए भगत जना कै मन तन रंग बिरला को पावे संग एक बस्त दीजै करमया गुरप्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहया सर्व समाए प्रभ बखसंद दीन दयाल भगत वशल सदा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आद पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपै सो होए पुनीत भगत पाए लावै मन हीत हम निर्गुनियार नीच अजान नानक तुमरी सरन पुरख भगवान सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमुख हर के गुण गाए अनक राज भोग बडयाई हर के नाम की कथा मन पाए बहु भोजन कापर संगीत रसना जपती हर हर नीत भले सो करनी सोभा धनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत

अष्टपदी जब अकार इहो कछ न दृष्टेता पाप पुन तब कहते होता जब धारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध किस संग कमात जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हर्ख सोग कह किसह व्यापत जब अपन आप पार ब्रह्म तब मोह कहा किस होवत परम आपन खेल आप वर्तीजा नानक करन हार न दूजा जब होवत

अभिमान जह स्वरूप केवल जगदीश तह शल शिद्र लगत कहो कीस जह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावै तह किसह भूख कवन तृप्तावै करण करावन करना हार नानक करते का नाहे सुमार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई जह सर्व कला आपह प्रवीण तह वेद कतेव कहा को उचीन जब अपन आप उतार तो सगन अप सगन कहा विचार जह आपन ऊच आपन आप नेरा तह कौन ठाकुर कौन कहिया चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी गत जानो आप जह अचल अछेद अपेद समाया ऊहा किसह व्याप्त माया आपस कौ आपह आदेश त्यो गुण का नाही प्रवेश जह एक है एक एक भगवंता तह कौन अचिंत किस लागे चिंता जह आपन आप पतियारा तह कौन कथ है कौन सुन नहारा बहो बेअंत ऊचते ऊचा नानक आपस कौ आपह पहुचा जह आप रचो परपंच अकार त्यो गुण मह कीनो विस्थार पाप पुन्न तह पई कहावत को नरक को सुरक बंछावत आल जाल माया जंजाल हम मोह परम पै पार दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार कियो बखयान आपन खेल आप कर देख है खेल संकोच तो नानक एक है जह अविगत भगत तह आप जह पसरा पासार संत प्रताप दुहु पाख का अपह तनी उनकी शोभा उनहु बनी आपह कौतक करे अनद चोज आपह रस भोगन निर्जोग जिस पावै तिस आपन नाय लावै जिस पावै।

संत पेटिया नानक मन प्रगास अष्टपदे संत संग अंतर प्रभ दीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समग्री एक सघट माहे अनक रंग नाना दृष्टा हे नौ निध अमृत प्रभ का नाम देही मह इसका विश्राम सुन समाद अनहत तहनाद कहना न जाई अचरज विस्माद तिन देखिया जिस आप दिखाए नानक तिस जन सो जी पाए सो अंतर सो बाहर अनंत घट घट व्याप रहा भगवंत धरन माहे आकाश पयाल सर्वलोक पूर्ण प्रतपाल बन तिन पर्वत है पार ब्रह्म जैसी आज्ञा तैसा कर्म पौन पाणी वह संतर माहे चार कुंट दह दिसे समाहे तिस्ते भिन्न नहीं कोठाओ गुरप्रसाद नानक सुख पाओ वेद पुराण सिमृत मह देख ससियर सूर निखेत्र मह एक बाणी प्रभ की सब को बोलै आप अडोल न कबहु डोलै सर्व कला कर खेलै खेल मोल ना पाई है गुण है अमोल सर्व ज्योत मह जा की ज्योत धार रहो स्वामी ओत पोत गुरप्रसाद भरम का नास नानक तिन मह इहो विसास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना कै हृदय सब धर्म संत जना सुन है शुभ बचन सर्व व्यापी राम संग रचन जिन जाता तिसकी एह रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो होए सोए सुख मानै करण करावन हार प्रभ जानै अंतर बसे बाहर भी ओही नानक दर्शन देख सब मोही आप सत किया सब सत तिस प्रभ ते सगली उत्पत तिस भावैता करे विस्तार तिस भावैता एक अंकार अनक कला लखी न जाए जिस भावै तिस लय मिलाए कवन निकट कवन कहिय दूर आपे आप आप भरपूर अंतरगत जिस आप जनाए नानक तिस जन आप बुझाए सर्व भूत आप वरतारा सर्व नैन आप पेखनहारा सगल समग्री जा का तना आपन जस आप ही सुना आवन जान एक खेल बनाया आज्ञाकारी की नीमाया सब कह मद अलिप्तो रह जो किछ कहना सो आपे कहै आज्ञा आवै आज्ञा जाए नानक जा पावै ता लय समाए इसते होए सो नाही बुरा और कहो किने कछ करा आप भला करतूत अतनी की आपे जाने अपने जी की आप साच तारी सब साच ओत पोत अपन संग राच ताकि गतमित कही न जाए दूसर होए ता सो जी पाए तिसका किया सब प्रवान गुर प्रसाद नानक इहो जान जो जान तिस सदा सुख होए आप मिलाए लय प्रभ सोए ओहो धनवंत कुलवंत पतवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया जन आवन का यह सुआओ जन कै संग चित आवै नाओ आप मुक्त मुक्त करै संसार नानक तिस जन कौ सद

गुण गाओ अष्टपदे पूरे गुरु का सुनोपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरै चिंद आस अनित त्याग हो तरंग संत जना के धूर मन मंग आप छोड़ बेनती करहो साध संग अगन सागर तरहो हर धन के भर लिहो भंडार नानक गुरपूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उदार हो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चितवहो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बार बार नानक जी का एह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन सुनत कमावत होत उदार आप तरह लोक है निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाकै मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजै सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नानक उदरे तिन कै साथे सरण जोग सुन सरणी आए कर कृपा प्रवाप मिलाए मिट गए बैर भई सवरेन सा अमृत नाम साध संग लैन सुप्रसन्न भय गुरदेव पूर्ण होई सेवक की सेव आल जंजाल बेकार ते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रवतारी नानक निभि खेप हमारी प्रभ की उस्तत करहो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसै सो होत निदान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते ऊच पाए अस्थान बहर न होवै आवन जान हर तन खाट चलै जन सोए नानक जिसै प्राप्त होए खेम शांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मध्य सगल ते उदास सुंदर चतुर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टेता एह फल तिस जन कै मुख भने गुरु नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए सब जुग महता की गत होए गुण गोबिंद नाम धुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोविंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जाकै मस्तक कर्म प्रभ पाए साध सरण नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत जन्म मरण ताका दुख निवारै दुर्लभ देह तत्काल उधारै निर्म

हुक्मी होवन आकार हुक्म न कहे आ जाई, हुक्मी होवन जिया हुक्म मिलै वडियाई, हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लेख दुख सुख पाईऐ, एक ना हुक्मी बख सीस एक हुक्मी सदा पवाईऐ, हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोय, नानक हुक्मै जे बुझै ता हाँ मैं कह ना कोय।

धोते उतर सुखे मूत पलीती कपड़ होए दे साबून लिये होए परिय मत पापा के संग ओह तो पहना वह के रंग पुन्नी पापी आखना है कर कर करना लेख लै जाहो आपे बीज आपे ही खाहो नानक हुक्म ही आव जाहो तीर्थ ताप दया दत दान जे को पाव है तिल का मान सुनया मनया मन कीता पाओ अंतर गल तीर्थ मल नाओ

आखे से पेके के जिसनो बख्शे सिफत सलाह नानक पात साही पात साहो अमुल गुण अमुल वापार अमुल वापारी अमुल भंडार अमुल आवह अमुल लै जाह अमुल आवह अमुल लै जाह अमुल पाए अमुल समाह अमुल धर्म अमुल दीवान अमुल तुल अमुल परवान अमुल बख्शीस अमुल निशान

आखे ईसरे आखे सिद्ध आखे केते कीते बुद्ध आखे दानव आखे देव आखे सुर नर मुंजन सेव केते आखे आखन पाहे केते कहे कहे उठ उठ जाहे केते कीते होर करिये ताख न सकह केई के जे वड भावे ते वड होए नानक जाने साचा सोए जे को आखे बोल विंगाड़ ता लिखी है शिर गावारा गावार सोदर के हसो कर के हाजत बै सर्व संभाले वाजे नाद अनेक संखा केते वामन हारे केते राग परि स्यों कहियन केते गावन हारे गावे तुह नो पौन पानी बै संतर गावे राजा धर्म दुआरे गावे चित गुप्त लिख जाने लेख लेख धर्म विचारे गावे सर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सुवारे गावे दासन बैठे देवत्या दर नाले गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे गावन पंडित पढ़न खीसर जुग जुग वेदा नाले गावे मोहनिया मन मोहन सुरगा मछ प्याले गावन रत्न उपाय तेरे अड़सड़ तीर्थ नाले गावे जोध महाबल सूरा गावे खानी चारे गावे खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे

सर्वं पाले रुवाल शांत वय प्रसाद आद रूपे अनाद मुहूर्त जोन पुरखे अपार सर्वमान तिरमान देव अपे वादे उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व कोपन काल जत्र तत्र बिरहार ही अवतूत रूप रिसाल

निवाज है, निरुख गनी बल खिराज है, निरुक्त स्वरूप है, त्रिमुक्त विभूत है, परभुक्त प्रभा है, सुजुगत सुधा है, सदैव स्वरूप है, अपेदी रूप है, समाहतोपराज है, सदा सर्वसार है, समाहतल सलाम है, सदैव काम है, निर्बाध स्वरूप है, अगाध है, अनूप है, उवंगाद रूपे नास रूपे नंगी नामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिभग त्रिवादे गंजे गादे सुभंग सर्भागे सो सर्वानुरागे त्रिभुक्त स्वरूप है, अछेद है, अछूत है, के नरकं प्रनास है, पृथ्वी अल्पवास है, निरुक्त प्रभा है, सदैव सदा है, विभुक्त स्वरूप है, परजुगत अनूप है, निरुक्त सदा है, विभुक्त प्रभा है, अनुक्त स्वरूप है, परजुगत अनूप है, चातरी छंद

विभूते प्रमाथं प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी नामे त्रिपंगी त्रिकामे निर्पंगी स्वरूपे सर्वंगी रूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न ताते न माते न जाते न पाते निरसाक श्री कह अमित उमीक है सदैव प्रवाह अजय है अजा है भगवती शांत।

तो विभूत है के अमितोपसा है के आतम प्रभा है के चलंग नाग है के अमितोपाग है माल पर शांत वे प्रसाद मोन मान प्रणाम गुण गण मुदाम हर नर प्रपांड

दृष्टि तरै तत्काला कृपा दृष्टि तन जाहे निहर हो ताके ताप तनक मै हर हो रिद्ध सिद्ध कर्म सब हुई।

ग्रंथ काला मन भाषित फल पावे सोई दुख नत से बे आपत कोई अड़ल सुने गुंग जो जाहि सुरसना पावई सुनाय मूड चतलाय चतुरता आवई दुख दर्द पाओ निकट ना तर नर के रहे हो जो जाकी एक बार चाओ पई को कह चाओ पई संबद सत्र सैस पनी जय अर्ध सस फुण तीन कहिजय भाद्रव सुधी अष्टमी रविवार तीर सतद्रव ग्रंथ सुधारा सु

हो जुग निराली। ज्यो तू चलाए तिव चले स्वामी, होर क्या जाना गुण तेरे। जिव तू चलाए तिव चले, जिन्ना मार्ग पावे। कर कृपा जिन नाम लाए, से हर हर सदा ते आवहे।

देवदृष्टो ये श्रम हो मेरे हो सात्य सुन नैनो पठाए श्री लाय सुनो सतबाणी जित सुनी मन तन हरिया हुआ रसना रस मानी सच अलाख विडानी ताकि गद कहीं न जाए कहे नानके अमृत नाम सुनहो पवित्र हो बहु सात्य सुन नैनो पठाए

गायन त्रिमलताग तिन गर ब्राह्मण पुरे नादुना भी आवे साध उड़ी रास कुड़ा बापार कुड़ बोल करे हार सारम धर्म का डेरा दूर नानक कुड़ दे आप।

रंग दीप के थाप कालंका कौंतल्यो राम कमल कुसुम चंप के नाम गौरा ओ कानरा कल्याणा अष्ट पुत्र दीपक के जाना सब मिल श्री राग वह गाव।

मन वसाया। जी जंत सब तो देव पायक वेख परसन आया, लभ लो बंकार चूका सतगुरु भला पाया। कहे नानक जिसनु आप तुठा तिने अमृत गुरते पाया।

सुनाया। पवित होए से जना जिनी हर त्याया, हर त्याया पवित होए गुरमुख जिनी त्याया। पवित माता पिता कुटुंब सहत स्यो पवित संगत सुभाइया। कहन दे पवित सुन दे पवित से पवित जिनी मन वसाया। कहे नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया। करमी सहज ना उपजे बिन सहज सहसा ना जाए। नह जाए सहसा किते संयम रहे कर्म कमाए। सहसे जियो मलीन है कित संयम धोता जाए। मन धोवो शब्द लागो हर स्यों रहो चित लाए। कहे नानक गुर प्रसादी सहज उपजे सहसा विजाए। जियो मैले बारो निर्मल जियो ता मैले। तिनी जन्म जुए हारिया तिसना वड्डा रोग लगा मरण मनो विसारिया। वेदा में नाम ही उत्तम सो सुने नाही फिरे ज्यों बेतालिया। कहे नानक जिन सच तजिया कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारिया। जियो निर्मल बारो निर्मल बारो ता निर्मल जियो निर्मल सत गुर ते करणी कुमाणी। कूड़ की सोए पहुंचे नाही मनसा सच समाणी। जन्म रतन जिनी खटिया भले सेवन जारी। कहे नानक जिन मर निर्मल सदा रहे गुर नाले। जे को सिख गुरु सेती सनमुख होवै होवे ता सनमुख सिख कोई। जियो रहे गुर नाले गुर के चरण हिरदे त्याए अंतरात्मा समाले। आप छड़ सदा रहे परणय गुर बिन अवरण जाने कोई। कहे नानक सुनो संतो सो सिख सनमुख होए। जे को गुर ते वे मुख हुआ बिन

पाए। आवो सिख सतगुरु के प्यारे हो गावो सच्ची बाणी, बाणी तां गावो गुरु के री बाणिया सिरबाणी। जिनको नदर कर्म होवै हिरदय तिना संबाणी, पीवहो अमृत सदा रहो हर रंग जपहो सारंग पाणी। कहे नानक सदा गावो ए सच्ची बाणी, सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी, बाणी तां कच्ची सतगुरु बाजों होर कच्ची बाणी। कहन

ना जानी चित जिनका हिर लया माया बोलन पैरवानी कहे नानक सतगुरु बाजो होर कची बाणी गुर का शब्द रतन हीरे जित जड़ाओ शब्द रतन जित मन लागा हो आसुमाओ शब्द सेती मन मिलया सचे लाया पाओ आपे हीरा रतन आपे जिसनू दे बुझाए कहे नानक शब्द रतन हीरा जित जड़ाओ सेव सगत आप उपाए कह करता आपे हुक्म वरताए हुक्म वरताए आप वेखाए गुरमुख किसे बुझाए तोड़े बंधन होवे मुगता शब्द मन वसाए गुरमुख जिसनू आप करे सो होवै किस स्यों लिवलाए कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए सिमरत शास्त्र पुन पा विचार दे ततै सार न जानी गुरु बाजो ततै सार न जानी तेहि गुणी संसार ब्रह्म सुता सुत्या रहन विहानी गुर किरपा ते से जन जागे जिना हर मन वसया बोले अमृत बाणी कह नानक सो तत पाए जिसनु आन दिन हर लिव लागे जागत रहन विहानी माता के उदर में प्रतपाल करे सो क्यों मनो वसारिये मनो क्यों वसारिये वडदाता जगन में हर पंचावे उसनो कोय पोय न सकी जिसनु अपनी लिव लावे अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा सुमालिया कह नानकी वडदाता सो क्यों मनो वसारिये जैसी अग्नुद्र मैं तैसी बार माया माया गण सब एको जे ही करता है खेल रचाया जा तिस भाणा ता जमया परवार भला पाया लिव

पिछे माया पाया हर आपिया मुल कहे मुल ना पाया जाए मुल ना पाया जाए किसे विटों रहे लोक विल लाए ऐसा सतगुर जे मिलाए तिसनू सिर सौंपिया विचों आप जाए जिस दा जियो तिस मिल रहे हर वसे मन आए।

हर हर नित जपियो जियो लाह खटियो दिहाड़ी एहो धन तिना मिलिया जिन हर आपे भाणा कहे नानक हर रास मेरी मन हुआ वणजार ए रसना तू अन रस राच रही तेरी प्यास न जाए प्यास न जाए होर तै कित जिचरा रस पल्ले न पाए हर रस पाए पल्ले पीए हर रस बहुड़ ना तृष्णा लागे आए एहो हर रस करमी पाई है सत गुर मिले जिसे आए कह नानक होर अन रस सब विसरे जा हर वसे मन आए।

जग मैं आया मन चाओ भया प्रभ आगम सुने आर मंगल गाओ सखी ग्रह मंदिर बनया अर गाओ मंगल नित सखिया सोग दुख ना व्यापे गुर चरण लागे दिन सुभागे अपना पिर जापे अनहत बाणी गुर शब्द जानी हरना

मेरिया इस जग में आए कै क्या तुद कर्म कमाया के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया जिन हर तेरा रचन रचिया सो हर मन ना वसाया गुर प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया कहे नानक कहो शरीर परवान हुआ जिन सतगुर स्यों चित लाया ए नेत्रो मेरे हो हर तुम मैं जोत तरी हर बिन अवरना देखो कोई हर बिन अवरना देखो कोई नदरी हर निहालिया इहो विस संसार तुम देख दे हो हर का रूप है हर रूप नदरी आया गुर प्रसादी बुझे आ जा वेखा हर एक है हर बिन अवरना कोई कह नानक हे नेत्र अंध से सत गुर मिलया है दिब दृष्ट होई हे सरवणो मेरे हो साचे सुनदा नो पठाए साचे सुनदे नो पठाए शरीर लाए सुनो सत बाणी जित सुनी मन तन हरिया हुआ रसना।

पवित्र हो बहु साचे सुन दैनो पठाए। हर जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन बजाया बजाया वाजा पौना नौ दुआरे प्रगट किए दसवा गुप्त रखाया। गुरुद्वारे लाए भावनीक ना दसवा द्वार दिखाया तहे अनेक रूप नाओ नव निध तिसदा अंत न जाई पाया। कहे नान कर प्यारे जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन बजाया। यो साचा सोहिला सच घर गावहु गावहु ता सोहिला घर सच जिथै सदा सच ते आवै सचो ते आवै जां तुद पावै गुरमुख जिना बुझावै। यो सच सबना का खसम है जिस बख्शे सो जन पावै। कहे नानक सच सोहिला।

0: इतनी सेवा प्रदान कर लीजिए कि तुमका दे प्रहलाद माफी बख्शने अगला प्रोग्राम शरण करो जी। बुलाओ फतेह
1: वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी धन्यवादी हाँ सत्कार योग ज्ञानी गुरप्रीत सिंह जी मुख सेवादार उन्होंने जथेदार जिन्होंने बड़ा ही रस भिन्ना कीर्तन आप संगत सरवण कराया है महाराज दे गुण गायन किए ने सो इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद। आओ हुण मैं बेनती करदा सत्कार योग भाई गुरमेल सिंह जी कनेडा वाले जेडा दे बड़ी गुरु की बख्शिश है जिन्हां नूं दास प्राणा जाण दा सवावां करन दा भी मौका मिलिया बड़ी चढ़दी कला वाले ने अते बड़े नताड़क प्रचारक ने। आओ भाई साहब हुणां तों कथा विचार गुरबाणी नाल जुड़िए। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।
0: वाहे

0: परम सत्कार जो गुरु की साध संगत सतगुर सच्चे पातशाह की अपार कृपा हुई है, जो आप जी की संगता की सेवा करन दा सुभागा समा मिलिया है, सतगुर सच्चे पातशाह जी का कोट अन कोट शुकर धनवाद शुकराना है। प्रबंधक कमेटी का तह दिलों शुकर गुजार हाँ जिन्होंने दासां नूं समा दे के नवाजिया। आप सारी संगत रब रूप संगतां शीस बख्शियो, सतगुर मेहर भरिया शीस ते हथ रख के सेवा लैंदे रहन। फुलां चुकां दी खिमा करदे होए गज के फतेह बुलाइए, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
1: वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही सत्कारयोग भाई साहब भाई जसपाल सिंह जी पौंटा साहब वाले ते उन्हां दे जथे दा, जिन्होंने आप संगतां नूं कीर्तन द्वारा निहाल किया। कुदरती तौर पर अज का जो दिन ते अज दे उह जथे हन, इह उस पावन पवित्र धरती दे जिन्हां नूं सेवा करन दा पड़भागा समा प्राप्त होया। दोनों ही जथे उस पवित्र धरती तों चन पौंटा साहब की धरती तों हुण आप जी दे सन्मुख भाई साहब भाई हरप्रीत सिंह जी पौंटा साहब वाले अरे उन्हों का कीर्तन यथा कीर्तन की हाजिरी भरेगा। जिमें कि आप जी ने पहला भी सवेरे भी बेनती की है, आने वाले दिनों के बहुत ही इतिहासक दिहाड़े इस महीने के आ रहे हैं। 30 अगस्त को धन धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की संपूर्णता दिहाड़ा आ रहा है। धन गुरु अर्जन देव महाराज जी ने जो 1604 के साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की संपूर्णता की है, वो 30 अगस्त को आ रहा है। तो 1 सितंबर को साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज का पहला प्रकाश दिहाड़ा आ रहा है।

अहनस सहज सुभाए दर्शन परसें गुरु के जन्म मरण दुख जाए सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी।

छुड़िए जिन हर हर नाम आधारो राम गुर सतगुर नाम दृढ़ाया मेरी जिंदुड़िए बिख पाओ जल तारण हारो राम हम बलिहारी तिन कौ मेरी जिंदुड़िए जिन हर हर नाम आधारो राम गुर सतगुर नाम दृढ़ाया मेरी जिंदुड़िए बिख पाओ जल तारण हारो राम जिन एक मन हर त्याया मेरी जिंदुड़िए तिन संत जना जयकारो राम नानक हर जप सुख पाया मेरी जिंदुड़िए सब दुख निवारण हारो राम।

त्रेते श्रवण पले शोभनीक है मेरी जिंदुड़िए, हर कीर्तन सुने हर तेरे राम। सो शीस भला पवित्र पावन है मेरी जिंदुड़िए, जो जाए लगे गुर पैरे राम। गुर विटो नानक वारिया मेरी जिंदुड़िए, जिन हर हर नाम च तेरे राम। ते नेत्र भले परवान है मेरी जिंदुड़िए, जो साधु सतगुर देखे राम। ते हस्त पुनीत पवित्र है मेरी जिंदुड़िए, जो हर जस हर हर लिखे राम। तिस जन के पग नित पूजिए मेरी जिंदुड़िए, जो मा

जिंदड़िए सब हर हर नाम त्यावै राम। पौन पाणी बै संतरो मेरी जिंदड़िए नित हर हर हर जस गावै राम। वन तृण सब आकार है मेरी जिंदड़िए

गुरु प्यारी साध संगत, आप सारे गुरुदरबार विच सतगुरुआं दी हजूरी विच बड़े बैरागमय समय विच जुड़ बैठे हो। सत्कारयोग माता जी, जो सतगुरु दी बख्शी हुई स्वासां दी पूंजी नूं पूर करदियां गुरचरणा विच जा बराजे हन, उन्हां दे अंतम अरदास वास्ते सारे साथ संबंधी सज्जन मित्र भैन भरा सतगुरु के चरणों में हाजिर हो के अरदास करने वास्ते जुड़े हो कि माता जी नूं सदीव काल सतगुर सचे पातशाह अपने चरणों से निवास बख्शन, पिछे परिवार नूं भाणा मनन दा बल बख्शन, प्यार इतफाक बख्शन। सतगुरु जी का अटल फुरमान है, राणा राव ना को रहे रंग ना तुंग फकीर, वारी आपो अपनी कोई ना बंधै धीर। आपने पंचम पातशाह का शब्द सरवण कीता है, सिद्ध साधक गिरही जोगी तज गए घर बार, कहां सो भाई मीत है देख नायन पसार। सतगुर आखदे हन, हे बंदिया नजर मार के देख अपने वड्डे वडेरियां ते परिवार विच जेड़े वड्डे वडेरे चले गए संसार च। अगली गल सतगुर सानू समत दे के समझाउणा करदे हन कि एक गल निश्चय कर लईए, एक चाल है एक चाल से सब अपनी वार। इह सतगुर दा अटल फुरमान है, जो उपजो सो बिनस है परो आज के काल। पर एक गल जरूर ध्यान करने वाली है जो सतगुर सानू समझाउणा करदे हन कि हे भाई, अपने जीवन काल विच गुर परमेश्वर दे नाल जुड़ के गुर परमेश्वर दा सिमरन सेवा बाणी पढ़ के अपना जीवन सफल करिए, ताकि साडा लोक भी सुहेला हो जाए ते परलोक भी सुहेला हो जाए। परलोक विच ही सानू गुरु नानक साहब दे चरणां विच निवास मिल जाए, यह यतन करना हर वेले हर इंसान दा फर्ज है। जीवन सफल करके जाइए, बाजी जित के जाइए। तो माता जी ने बहुत सतगुरु दे दर दी सेवा कीती, परिवार दे नाल बड़ा प्यार स्नेह रखिया, सारे परिवार ने सेवा कीती जो दास ने सुनिया है। सो यही अरदास है कि सतगुरु सच्चे पातशाह सत्कारयोग माता जी नूं आप दे चरणां विच निवास बख्शन, पिछे परिवार नूं भाणा मनन दा बल बख्शन, प्यार इतफाक बख्शन। आओ ये पंक्तियां पढ़ के फिर समाप्ति करिए। सारे गुरमुख माई भाई अपने दिलों अरदास करो, आओ सारे रल के सरवण करो, नाले गायन करो।